आबशार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: लो दोस्तों अगला गीत सुनते हैं जी, मलकी की मां। क्या बात है, बहुत फेमस सॉन्ग सी उस टाइम दे विच, बहुत ज्यादा इनू लोगों ने सुनिया। और आप मलकी की मां थाडे नाल पेश कर दें जी, मोहम्मद सदीक साहब ते रंजीत गोयल।
1: कीमा रांझे दा भतीजा गढ़ मुगलाने दे सरदार राय मुबारक दी लड़की मलकी दे नाल व्याया गया। निक्किया निक्किया दा व्याह हो गया, जवानी आई ता दोहां दे हुसन जवानी दी चर्चा गली गली महल्ले महल्ले घर घर होण लगी। मलकी दियां सहेलियां मलकी नूं आखदियां, अड़िए मलकीए तेरा कीमा असीं कोरियां ते बैठा वेख्या सी, बड़ा सोहणा सी, हुण तां गभरू होके होर भी सोहणा लगदा होणा। उधर बचोलन कीमे नूं आख्या करे, अरे आ कीमिया तेरी मलकी हजारां ने बल्कि लखां च इक है, वेंदियां सार इंसान तां की परिंदे वी काटा के निकल गए। एक दूजे दे हुसन दी तारीफ सुन दे एक दूजे उत्ते आशक हो गए, सबबी मेले हुंदे ने। एक वारी कीमा गढ़ मुगलाने नूं जा रहा, रस्ते दे विच इक खूह दे उत्ते कुछ कुड़ियां पानी भरदियां ने, उहनां विच मलकी वी सी। मलकी दा हुसन वेख के कीमा खूह ते गया पानी मंगदा उहनां कुड़ियां तों, तां उहनां कुड़ियां दी सरदार ओह हुसन दी मलका मलकी नूं तोड़ के जवाब दिंदी है। जरा गौर नाल सुनना की जवाब दिंदी है।

प्रभात रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन। Expose yourself, God, you see this wonderful world, lovely, sweet or funny world, with your own watching eyes and experience.

0: साल है ना, उसका आ जाता भाव ईसो फिक्स जिस जगह नहीं दे रहा सान साल है ना, औखा हो गया कहना नहीं जी मैं नहीं तेन रस्ता देना। पर ये मांसपेशियां फ्लैक्सीबल हैगियां ने जी, इन्हां च कोई नुक्स नहीं हैगा, या इहदे अंदर गैस नहीं भरी, इहनूं उन्होंने पूरा नहीं फैलाया होया, ते उस वेले साधारण तौर ते ब्रोंकस नूं जगह दे दूंगा, साल करी जा भी तू साल लंघ जा, कोई गल नहीं हैगी, जदों चंगी बनदी ते कोई मतलब नहीं। ते जे इहदे अंदर आपदी ही गैस भर गई, कहिंदा मेरा ते अपना ही समान पूरा नहीं आउंदा, मैं तेनूं जगह कित्थों देवां, उस वेले साह लैणा मुश्किल हो जांदा आ। उस वेले हालात ये होंगे ने कि लोग कहते हैं यार मेरी बुरकी तो इतनी ही फस गई, जा ही नहीं रही संघ तो है ना।
1: हाँ जी, कई बार जो पिछे धोन से जाए मुक्का जाए, कई बार मारते होंगे
0: होंगे हूं देखो ना, कुदरती पता नहीं किवे लोगों नू समझ आ गई भी सानू आ कुछ करना चाहिए। हूं देखो ना, मैं थोनू दसिया भाई ईसोफेगस दी ओरिजिन जिथे शुरू हुंदा आ, फेरिंग्स दे नाल जुड़दा आ, जे पिछले पासो वेखिए फिर ये भाई सिक्स वर्टेबरे लैवल तो शुरू होंगे
1: जी।
0: पहला वर्टेबरा होंगे जिन्हों एटलस वर्टेबरा कहने, फोराम मैगनम एक सुराग है जी स्कल की हड्डी के गुत्ती दे विच, उन्हों कहने फोराम मैगनम, गुले वांगू फसदा आ, जिवे ट्रैक्टर ट्राली नू आपस असि फिर फिट करते हैं, वह गुले वांगू फस जाता है, और ओनू असि एटलस वर्टिपरा कहने, दूजे वर्टिपरा शकल डिफरेंट हैगी, और इन एक गिणो तो उस बाद होर गिणो छेवे वर्टिपरे के लैवल से आ। ए मतलब की है भी एक बार फैसिलिटी देने वास्ते पुलिस आ गई तो उन्हें आखिया भी अरे क्रम स्टेटस को बहाल करो, आज थाने उसे फैसला करने हैं, तो लोग मुक्की मारते हैं पिछे है जी, मुक्की मारते हैं, या बच्चे आम तौर से पलच जाता कुछ ऐसा, उपलच जाना असि इन्हू कहने, अंग्रेजी चौकिंग कहने, पलच जाना या चौकिंग जेड़ा हुंदा हो इस करके हुंदा या भाई ईसोफेगस अड़ गया अपनी जिद ते भी मैं नहीं तुहानू जगह दिंदा
1: जी,
0: और मैं नहीं तुहानू जगह दिंदा, जिहड़ी कि अगे आम तौर ते जगह वरतदे सीगे ए फलैक्सीबल सी, इहदे विच जल्दी मोड़ पै जांदा हैगा, इक तां इहदे विच एपीग्लोटिस वाले एरिए दे विच मोड़ पैंदा हैगा, उस तों हेठां जिहड़ियां इह ब्रोंकस लंघ दियां ने साह नालियां लंघ दियां ने उहदा मोड़ हो गया। उस तों बाद जिहड़ी साडी एओर्टा है ना
1: जी,
0: साडी खून दी नाली जिहड़ी हार्ट विचों निकल के इहदे विचों पहलियां दो नालियां निकलदियां ने, जिन्हां नूं असीं कैरोटिड आर्टरीज कहिंदे आ, जिहड़ियां ब्रेन नूं सप्लाई करदियां ने। हुण इह जदों उहदे च मोड़ पैंदा है ना, ते इह इस ईसोफेगस नूं बहुता परे प्रेस कर दिंदे भी मैनूं लंघना दे
1: जी,
0: ईसोफेगस बैकवर्ड वाले पासे तकिया जांदा, पिछले पासे नूं तकिया जांदा हैगा, और उथों भी यही कंडीशन आनी शुरू हो जाती है, लोग छाती ते हथ रख लेंदे, बाहर हो गए पिछले पास छाती मलदी है, फिर कई बार ठीक हो जाता
1: है,
0: समझ जाती उस गल विया करो, छाती नूं मलो या पिछले पासे मलो, वह फिर सैट हो जाता। कारण के हुंदा आ भाई ईसोफेगस कोल आपदी प्रॉब्लम बनी हुई है, इहदे विच गैस एसिड वगैरा जिहड़ा हेठां तों आ रहा आ, इहदी इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, लचक खत्म हो रही है, कि ए दूजे नूं लंघण दा दे देवे तां सुभाव हुण गर्म हो गया, कहिंदा ना भी मेरा तां अपना ही नहीं सरदा। उस हालात दे विच इह जिहड़ा साडा खून दा फ्लो है उहनूं वी रुकावट पैंदी है, जिस करके कई वार लोग छाती मलदे आ, कई वार लोग पिट्ठ मलदे आ, ताकि साह आना सौखा हो जाए हेठां वाले पासे नाल, ब्रोंकस हैगी साह वाली नाली हैगी है, तो एक ए हो गया। उस तों बाद जदों इह ईसोफेगस हेठां वाले पासे जांदा है ना, ते इहदे 23 इंच पूरे हो गए, 23 सेंटीमीटर पूरे, सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर पूरे हो गए, ते उत्थे जाके इहनूं एक बार्डर लंघना पैंदा, कस्टम डिपार्टमेंट दा बार्डर लंघना पैंदा डायाफ्राम दा, ओह डायाफ्राम जिहड़ा आ छाती ते पेट नूं वखरा करन वास्ते एक दीवार कुदरत ने बनाई हुई है, भी तुहाडा अपना डिपार्टमेंट है, इहनां दा अपना डिपार्टमेंट हैगा आ, पर फिर भी एक ऐसी सांझ हैगी है, कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट सांझे ने, उन्हां दी आवाजाई हुंदी रहिंदी है, जिवें उपर तों एओर्टा आई ते जिन्हां दे छाती च रहिंदी है उहदा नाम थोरेसिक एओर्टा हुंदा आ, जदों इस बार्डर नूं लंघदी है ते उहदा नाम डिसेंडिंग एबडोमिनल एओर्टा हो जांदा हैगा आ। इसे तरह ही जदों हेठों खून उपर नूं वापस आ रहा है खून, उसे तरह उहदा नाम वेना कैवा हो जांदा हैगा आ, और इसे तरह ही